तड़ुभियले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलया रहाऊ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा कितना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाऊ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मो रक्षा निज कर दै करे आए सब बैरन कौ आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आस्था तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अबर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे अबरे है मरण काल का त्रास निबरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरिया तुरजू करो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बपतरा काल पाई सब जू अवतरा काल पाई कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान गड़ गड़ के बट बट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख कर तो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदराल मऊ जानत भेद भेद अरे आलम

तां को कारे पाहन अनुमानत महामूढ़ का श्रेय भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीन तन भेव आप अपनी बुद्ध है जेती मरणत पहन पहन तो है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा।

और रच दीने। कहूँ फूल राजा हव बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव।

प्रवरण गाता। जे आस तोज तब शरणी परे, तन के दोष्ट दुख तब मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए।

खड़ग के तम शरण तिहारी आप हास दलो बारी सर्वठार महो सहाई दुष्ट दोग ते लो बचाई। सुवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ सरियस बान कृपा तुमरी कारु मैं न कहे ओ सब तो बखाने ओ।

राम कली महला तीजानंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईयां शब्दों तंगा वो हरि के रामन जिनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा ज्ञाना ही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा शिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां ए वड़ियाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तैं सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रो पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से आधारो जे को खावै जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वास्तव तजी न जाई नितनित राख उर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां।

आओ। जानके चरण वसह मेरा ही आरय संग पुनीता देही। जानकी तूर देह कृपा निद नानक कै सुखही। जानके चरण वसह मेरा ही आरय संग पुनीता देही। जानकी तूर देह कृपा निद नानक कै सुखही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला रागोड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता की है करते का हो विचार। इतकार गावो सोहिला शिविर सजन हारो। तुम गावो मेरे नृपो का सोहिला हो वारी जत सोहिला सदा सुख होय रहाओ। नैत नैत जीअड़ समालियन देखेगा देवन हारू। तेरे दाना कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार। संबत सहा निखया मिलकर पावो तेल देह सजन सिसड़िया। जो होवै साहिब सुमेल कर कर एहो पहुंचा सरड़े नत पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दी हवन। राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ। विश्व जसे कड़िया पहरा थिति बारी महावा। सूर्य को रतन एक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मय थाल रव चांद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरु करे। सगल बन राई फुलंत ज्योति कैसी आरती होए। कब खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय कहो। सहस मूर्त नन एक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बैन। सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए। तिसद चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भाव है सुवारती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मन वन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिंग कहो होए जाते तेरा नाहीं वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार ले वो मंडल मंडा ही। कर साधु अंजलि पुन वड्डाही कर डंडाओत पुन वड्डाही रहाओ। साकतार साधन जाने तिन अंतर हो मैं कंडाही। ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है जमकाल सहे है सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पव खंडाही। अविनाशी पुरख परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा ही। जन नानक नाम दार टेक है हर नाम ही सुख मंडाई। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मिता। संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हरला या गए बसन सुहेला। औध कटे दिन सरहणारी मन गुरमिल का सवारी रहाऊ। ए संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिस जगाए पिया वह रास अगथ कथा तिन जानी। जा कहो आए सोई ब्याह जो हर गुर तै मने बसेरा। निज कर मैल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा। अंतर जामी

गुरु गोबिंद सिंह ने महाराज पातशाह जिन्हां दे बाबत भाई साहब भाई गुरदास जी दूसरे गुरदास जी कहते हैं सिखा जे तो मेरे ना प्यार करदा ना ते मैं भी तेरे ना बहुत प्यार करदा है। किन्ना प्यार करदा है? फरमाउंदे हन सतगुरु, नहीं दद सार पिता पतामा पर पतामा सुजन कुटुंब सुत बंद पना प्राता है। महाराज कहंदे मेरा माता पिता दे नाल प्यार है नहीं गा, पिता दे पिता नाल भी प्यार है नहीं दद सार पिता पतामा पर पतामा सुजन कुटुंब सुत बंद पना प्राता है। नहीं ननसार माता पर माता दर्द माता मामू मामी मासी मोसा बिबद बखियाता है। महाराज कह दिया नहीं ससुरार सास सौरा सारो सारी। महाराज कहने मेरा सास सौरा ना भी प्यार है नहीं ससुरार सास सौरा सारो सारी। नहीं पर तीसर जाति के न दाता है, असन बसन तन ताम कहूं मैं ना देखिए कियत। जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। महाराज कहंदे जिन्ना मेरे सिख ना मन मेरा गुरु दे सिख ना प्यार ना मैनू होर किसे चीज दा प्यार है जेड़ा ए आउंदा नहीं। आओ आपां ढाडी सिंघां पासों दरबार दे दीवान विच संग्राम दे नाल संबंधित खालसा पंथ महाराज ने पंथ है जेड़ा ए प्रगट कीता संग्राम दा पवित्र दिहाड़े दे उते। इहदे नाल संबंध पहला तो भी संग्राम ना सी। कई विद्वान तो आखदे अजे साडा संग्रामा सुनण नाल ते पूर्णमासियां नाल कोई संबंध नहीं, पर सतगुरु ने गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने कहने ए संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा जेड़ा मनाउणा इस वास्ते शुरू कीता सी।

बेनती कर रहे हैं कि जिसने अमृत छक लिया ते गुरु वाला बन गया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने सिख कौम ते ऐसी रहमत की है, महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसी रहमत की वे जिसने अमृत छक लिया गुरु दे घर आन लग पिया, घर विच सारिया नियामतां जिहड़ियां ओ आ जांदियां हन। साडे नेड़े एक पिंड है, बहुत वड्डा पिंड है, ते उत्थे एक नौजवान ऐसा सी दिन रात शराब पी जांदा सी, ते उह सरसे वालां दा बेली बनिया गया सी। उत्थे कहिंदे विद्वान बंदे एक बारी उन्हां ने सद्दे हन अपने पिंड दे विच, तीन दिन दीवान आ जिहड़े उत्थे सजदे रहे, उस नौजवान दे उत्ते ऐसा असर पिया ते घर विच दो बोरियां शराब दियां बोतलां दियां पईयां सन, ते ओह सारियां जाके उन्हें भन दित्तियां वे किसे होर नूं वी जहर आ जिहड़ी नहीं देनी, भन दित्तियां ते गुरु दा अमृत छक के गुरु वाला बन गया। असी गए उन्होंने सानू प्रशादे वास्ते करे सद्या, ते उन्होंने जेड़े बीबियां सन घर विच परिवार से वो कहन लगे, बाबा जी जदों दा अमृत छकिया गुरु वाले बने आ ते घर तां साडा सुरग बन गया, नहीं तां अगे सरदार होरे उत्थे बैठक विच बैठे हुए ते दूजे जेड़े टोली चढ़ से शराबा पीण वाले इन्हां कोले आ जांदे, बारह एक बजे असी उड़ीक दिया रहनिया वे कदों हटदे आ शराब पीना ते कदे रोटी खान, ते असी भी सौईए कहिंदे नरक सीगा साडा घर ते पर सुरग बन गया। बड़ा सतगुरु ने मेहर कर दिती, आपां गल कर रहे हां गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने जिहड़ी सिख दी तस्वीर बना गए से गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह, एक खाका तैयार कर गए से उस नूं संपूर्ण किया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह ने। आपां कल दे दीवान विच बेनतियां करांगे, साडे सिरां पासों सुणांगे, हुण इन्नी सेवा जिहड़ी ओ प्रवान करनी, ते बहुत सारिया संगतां वालों बीबियां भैणां धीआं वालों विधां वालों बच्चियां वालों बजुर्गां वालों ढाडी सिंघां नूं माण वजों माया अरदास होई है, इतिहास पेट माया अरदास होई है। सतगुरु अपने दिलों कोलों सुख बख्शण खुशियां बख्शण। आओ हुण आनंद साहिब जी का पाठ होण लगे है, सब संगतां सब माई भाई रल मिल के आपां आनंद साहिब जी का पाठ करिए जी।

प्रेम होई सब दी आसा, गुरु अर्जन देव जी कर अरदासा। हरि मंदर विच जगमग जोत दा शरदा नाल कीता प्रकाशा।

महाराज जी तुहाडा जीवन कैसी सेवा ते प्रेम दी उदाहरण है। 72 साल दी बिरध अवस्था विच गुरु अमरदास जी हर रोज अमृत वेले गोइंदवाल तो सिर ते पानी की गागर चुकदे श्री खंडूर साहिब पुज के गुरु अंगद देव जी नू इशनान करवांदे।

विश्वास काती अकिरत कण में को ना रखुंदा। विश्वास काती अकिरत कण मैं को ना रखंदा। सिमर मुरीदा छाडिया सत।

दान दतारा अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच भाखै गुर का शब्द बीचारा कहो नानक जो प्रभ को भाणा।

सुगड़ सुजाना सद पर धाना अमृत हर का नामा चाख अगानी सारंग पानी जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणू कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसै दी बाणू मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजी नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरै ना आवै जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणी है कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवां हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलख भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्यावे है पुरख पत परमेश्वरा सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी माने बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझ पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया जलने बुझाई शांत आई मिले चिरी वछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अम्यो पीजै रैन दिनस अराधी है जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है साधी है भाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेन थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे भव जल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब एक पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवां, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारण, तिस बिन अवरना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसरै। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्ब गुण जगदीसरै। कर सेव सेवक दिन सरैनी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रखको, अंचल तां कै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट कीजै जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इस मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भयावड भागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवां, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी। मन चिंदियाड़ा फल पाव हो, राम कली महला पंजवां। रुति सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर। आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन तेजन, जिन्नी एक मन त्याया।
सफल जन्म पया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सातुद भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया तिया, नानक जप भगवंत संत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्या, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक शरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरणागती, जा का वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर चंत रुत सितियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनते माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोए जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिछोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत नाद बनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पौन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो सलोक संत सहाई जी के पवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्ब गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद को आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो।

ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चेत, ओंकार शैल युग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उधरी, ओंकार गुरमुख तरी, उनमें अखर सुनो विचार, उनमें अखर त्रिभुवन सार, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाउ सत्य सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखे साच संभाली, बिन साचे जग काचा, तदे धर्म तरे धर्मापुर, गुणकारी मन धीरा, तदे धूल पड़े मुख मस्तक, कंचन भय मनूरा, तन धरनी तर आप अजोनी, तोल बोल सच पूरा, करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा, ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए, गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लहया, मन तन साच सुखाया, आपे गुरमुख आपे देव, आपे अमृत पियाया, एको एक कह सब कोई, हूं मैं गर्भ व्यापे, अंतर बाहर एक पछाणे, यों कर महल संजापे,

क्यों गह राखो अफर्यो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विभूते इब तब फिर पछताई एक सरी वह ता गत मित पावे आवन जान रहाई एक अचार रंग एक रूप।

पाई, अंतर शब्द साच लिवलाई, रोस मां कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे, राजे राय रंक नहीं रहना, आए जाए जुग चारे, रहन कहन ते रह न कोई, किस पह करो बेनंती, एक शब्द राम नाम निरोधर, गुरुदेव पतमती, लाज मरंती मर गई, घूंघट खोल चली, सास दीवानी बावरी, सिर ते संक टली, प्रेम बलाई रली स्यो, मन मह शब्द आनंद, लाल रती लाली पई, गुरमुख पई निचिन।

आया जग कोए मजूर गया ठगाए ठग लाहा नाम पूंजी वेसा नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह आए विभूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आथ सैल नीच घर होए आथ देख निवै जिस दोए आथ होए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं धंदा तैर जो दिसै सो आपे आप आप अपाए आपे घट थाप आप अगोचर धंदै लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहूणा मुक्त किव होई बिन नामै वे रोध शरीर क्यों ना मिलह काटह मन पीर वाट वटाऊ आवै जाए क्या ले आया क्या पल्ले पाए बिन नामै तोटा सब थाए लाहा मिलह जा दे बुझाए वण जवा पार

कीता। काम क्रोध काया कौ गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढालै। कस कसवटी सह सोताऊ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कही है किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतरवा।

ब्रह्म मोटा ठाकुह मनुआ राखुह ठाई तहक मुई अब गुण पछताय ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर चिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठीदार डर कुमुई घर आपने दीठी कंत सुजान डर राख्या गुरे आपने निरपहु नाम बखान डूंगर वास तिखा कनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखै सब कोई जय पावै तै दे गुरु द्वारै देवसी तिखा नवारै सोए तंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पए हौले निकते पार अमर अजाची हर मिले तिनकै हौ बल जाओ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाओ मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना होगा सावन जानव गुची है दुबदा व्यापै रोग नाम मिहूणे आदमी कलर कंद ग्रंथ बिन नाम क्यों छूटी है जाए रसातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वजोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले कसे तिन को फास नारंच उड़ह ता बेगुल बेगुले ताक है चोग कणी पंख तुटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छूटी है वड़ा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय भावै तैं दी थर थर कंपै।

सर्वे थानंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखनहार।

मन दी जय सिर सौंपी है पी करते की टेक तंदा तावत रह गई मन में है शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेटे गुरु गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत ना छूटी है बिन गुर जमपुर जाही ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताही ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान बिन नावै निरभउ कहां क्या जाना अभिमान थाक रही केव अपना हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रियो प्रियो जे करी।

कहो प्यारा पाप लगे पापे पासारा पर हर पाप पछाणे आप ना किस सोग वियोग संताप नरक पड़म तो क्यों रह क्यों बंचे जम काल क्यों आमन जाना विसर झूठ बुरा खै काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माही बिन नावै क्यों छूटी है पापे पचह पचाही फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ हाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यो मछली फाथी जम जाल बिन गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिबलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बहराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए बाबुल कै कर बेतड़ी बाली बालै ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़ी कर कर भजे ताहे उतारे उसरे ताहे सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये देवाने बिन भागा क्या पाइए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राती बहुड़ न पछो ताइए पब्बे पल है गुरमुख बूझे ता निज कर वास्ता पाइए पब्बे भौजल मार्ग विखड़ा आस नरासा तरिए गुर प्रसादी आपो चीने जीवत्यां इव मरिए माया माया कर मोए माया किसे ना साथ हंस चले उठ डुमण माया भूली आथ मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी कर मोए बिन नावै दुख पाल गढ़ मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण नानक सच्चे नाम।

रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत ते आई है अंत ना पारावार राड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई राड़े गारड़ तुम सुनो हर वसे मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चाह बेखचार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया साचो नाम अमोल।

0: कह बूझै पुरख सुजान हिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणप ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणै आपना फूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वत विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई है संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घणे कर था की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया कर सार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर विचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी है विद्या बिचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लै है राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी है चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी singsabha2@gmail.com।
4: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
5: Main to Vaheguru Parmeshwar hai, oh ghare laha, jangalan vich jaan nu nahi keha, grist chhaddan nu nahi keha, oh tusi ghar gristi sevkan nu kirt karam vich hi bakhsh ditta, eh nahi keha ke ghar baar chhad ke bahar jao। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੈ ਲਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, पर तुसी उस घर विचों ही परमात्मा दी गद्दी दी प्राप्ति कर ली। इसे तरह जेड़े सिख तुहाडी संगत करदे ने उन्हां रहिंदिआं नूं ही किरत करदिआं नूं ही ग्रिस्त जीवन विच ही वाहिगुरू मिला दिता।
6: सतगुरु दयाल हर नाम दृढ़ाया।
5: सतगुरु फिर गुरु अमरदास जी दा वचन है, उन्हां ने दयाल होके कृपालता करके तुहानू हरी दा नाम दृढ़ करवा दिता।
6: इस प्रसाद वस पंच कर
5: गुरु अमरदास जी दी कृपा द्वारा तुसी उस नाम दे अभ्यास द्वारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंजा नू वस विच कर लिया, अपने अधीन कर लिया। इथे ए वी गल याद रखे, उन्हां नू मारना नहीं है। ठीक तां कहिंदे इन्हां नू मारो खत्म करो, यही मर गए ते फिर आपां इत्थे किथे रहांगे गुरसिख प्यारे? फिर तां सृष्टि दी कार नहीं चली, काम खत्म हो गया, सृष्टि दी उपज खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो गया, गुआंढी सांझ नूं चुल्हा पट जूगा। इधर थोड़ा जे चाही दी है ताकत ताही जीवन दंदे ने, केड़ा जीवन दंदा इत्थे? ते लोभ खत्म हो गया, बच्चियां दी परवरिश किवें होवेगी? खत्म। फिर तां मोह खत्म हो गया, ये पावां भैणां बैठियां, जे मोह ना होवे तां बच्चे दा गंद कदों साफ होवे? आप दुखी मां किवें रवे ते सुखी बच्चे नूं किवें रखे? ये मोह है गुरसिख प्यारे, ये तां चाहीदे ने, पर चाहीदे किवें ने? अपने अधीन, इन्हां दे अधीन आपां ने नहीं होना। मैं तुहाडे कोल कारां रब ने सोहणियां बख्शियां, उन्हां चिर कार सुख दऊगी जिन्ना चिर थोड़े अधीन है। जिदन थानू अधीन कर लिया फिर हस्पताल सत नए आए। यही काम क्रोध लो मोहकार दी गल है, मन नू मारना नहीं। महाराज ने कहते मन को मार कहो किस तारे, जे तेरा मने मर गया मुक्ति किनू दवेगा? शरीर ने तो मुक्त नहीं होना है, तो मिट्टी हट गए। मन को मार कहो किस तारे, इनू जितना है। जितन का अर्थ होंगे अपने अधीन कर लेना, कोई जितन का अर्थ कब्जा नहीं, अधीन। जिन्हू जित लिए अधीन हो जाता है, जिदन तू मन नू जित लिया मन जीत है जगजीत। हे गुरु रामदास महाराज, तुसी गुरु अमरदास जी तो सिखिया लेके अपने पंजे काम क्रोध लो मोहंकार इन्हां ते काबू कीता। इसे तरह जेड़े गुरसिख तुहाडी संगत करदे ने उन्हां दे भी विशे विकार

एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कहां तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तुहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। उदया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कौ नानक सब तेरी वड़ियाई कोई ना न जाने मेर। कौ नानक सब तेरी वड़ियाई कोई ना न जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु स्वरूप साध संगत अकाल पुरख श्री वाहिगुरू जी की अपार कृपा हुई है। शामा दे दीवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन पवित्र सचखंडी दरबार विच सजे हन। सोदर संध्या रह रास आनंद मंदावणी जी के नितनेम उपरांत सतगुरां ने नितनेम अनुसार गुर शब्द दी विचार दा सुभाग समा बख्शिया है। धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र पट्टां दे सवैयां दी विचार। दोवें समय अमृत वेले ते शामां दे समय आपां नूं बख्शिश होई है। आप वड़भागी गुरमुख हो जो नितनेम अनुसार सुन हर कथा उतारी मैल। महापुनीत पए सुख सहर सब ते उत्तम हर की कथा। सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी दी कथा विचार जो सतगुरां दी कृपा नाल ही हो रही है क्योंकि बाणी अगम अगाध बोध है। सतगुर मेहर करके इस कथ बाणी दी कथा आप करवा रहे हन। आओ सारिया संगतां अगली बाणी सतगुर पातशाह जी दी बख्शिश द्वारा विचारीए इस समय नू सफला करिए। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु।

0: Behold, even if one lost soul after listening to these few words speaks the eternal truth of Vaheguru and accepts it in their heart, then our humble quest will have been fulfilled.
1: अगर एक भी व्यक्ति इस टेप नु सुन के उस अकाल पुरख वाहेगुरु जी दा नाम सतनाम श्री वाहेगुरु अपने मन विच बसा लवे ता असी समझांगे कि साडी इह टेप बनाउण दा मकसद पूरा होया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
3: साड़े स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
4: साड़ा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

संतन सुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, गड़ गड़ के बड़ बड़ की जाने। जाबुद कर करा कर धारा, बज दर्द देह बारा। जबया करख कर दो गहो, तम मैं मिलत देह दर्शो। जेते बदना सिर सधारे, अब अपनी बूझ जारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद्य नील नाद्य संब। ताका मूढ़ जार दिदा, याको बेब न भाव दिदा। ताको गर्भाहन मानत, महामूढ़ कर बिन जानत। महादेव को कह सुधा सेव, निरंकार का चिंत धरे पास। निरंकार का चिंत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती। बरनत बहन बहन तो है तेती, तुमरा लखन जाए पसारा। के बिद सजा प्रसन्न संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कई भूपा, अंडज अजेर सिद्ध जगे नहीं। उद्वर खान बहुर रज देनी, कहूं फूलरा जावे बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चम पब, आदि जगाद स्वरूप सुयम पब। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सख संग्रो। दोष जे ते उठव तद पाता, सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुज तब सरणी परे, दिन के दोष दुखता मरे। पुरख जवन पग भरे तिहारे, दिन के तुम संकट सब टारे। जो गल को एक बार त्याय, ताके काल नहीं आए। रचा होए दाएं सब काला, दृष्ट रिष्ट डरे तद काला। कृपा दृष्ट धन जहन हर हो, ताके दाव दग मोहर हो। रद सद कर्म सब होई, दुष्ट शास सक न कोई। एक बार जंत में संभारा, काल वास्ते ताई उबारा। जैन नार नाम दयार कहा, दारिद दोष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दलि उबारी। सर्वठौर महो सहाई, दोष्ट दोग तेरे बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हा दल उबारी। सर्वठौर महो सहाई, दोष्ट दोग तेरे बचाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु तां पाया सहज सेती, मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्द तां गावो हरि केरा, मन जनी बसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सोक मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है। जिस दे सो पावे, सदा सिप सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया। आवाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसया। जिन इच्छा सब बजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरबित हो। जिस दियां ही बढ़ियाईया, कहे नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारो, साचा नाम राधारो। वाजे पंच शब्द जित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन का। उसे नाम हर कह लागे, कहे नानक तैं सुख होवा। जित कर अनहद वाजे, साची लवे बन दे नमाणी। दे नमाणी लवे वाजो, क्या करे बेचारिया। तुद वाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लवे बाजो, क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। जाणिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा करे वे कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका सब सचे सवार।

गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ शब्द रतन जत मन लागा ही हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसन दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शिव सकदा पो पाए गए करता पे हुकुमरदाई हुकुमरदाई आप वेखै गुरमुख सब जाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए गुरमुख जिसन आप करे सो होवे कस्त्यों लिबलाई कहे नानक आप करता प्यो कुंभ जाय सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्सर न जानी गुरु बाजो तत्सर न जानी तेहि गुणी संसार परम सुता सत्यारायण बयानी गुर कृपा दे से जन जागे जनार मन वसया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसन वणदन हर निवला गए जाग त्रैण विहानी माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो वसारी है मनो के वसारी है बुढ़दाता जय अगन में आहार पहुंचावे उसनो कहे पो न सकी जिसन अपने निवलावे अपनी लिव्या पेलाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक बुढ़दाता सो क्यों मनो वसारी है जैसी अग्न उदर में तैसी बार माया माया अगन सब एक जे ही करता खेदर जाया जान तिस पाणा दा जमया परवार भला पाया लग फड़के लगी देशना माया अमर वरताया हे माया जर विसर मोह उपजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिन लिव लागी तनि विच माया पाया हर आप मुल कहे मुल न पाया जाय मुल न पाया जाय किसे बिटो रहे लोग विल लाई जिसदा जीव तुस मिल रहे हर वसै मन आई हर आप मुल कहे भाग दिना के नानक अज नर पल पाई हर आप मुल कहे मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाई ऐसा सतगुरु जी मिले तसनो सिर संपिए बिचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आई हर आप मुल कहे भगत न के नानका अज नर पल पाए हर रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर दे रा जानी हर न जप जियो ला घट दिहाड़ीए धन तना मिलया जन हर पे पाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जा रहा ए रसना तुअन रस राज रही तेरी प्यास न जाई प्यास न जाई और दगत जो चर हर रस बल न पाए हर रस पाई पल पीए हर रस बहुण न तृष्णा लागे आए हर रस करमी पाई आए सतगुर मिले जस आए कहे नानक और रसा विसरे जा हर वसै मन आए ए श्री राम मेरे हर तुम जोत रखी दादी जग में आया हर जोत रखी दुद विच दादी जग में आया हर आपे मत आपे पिता जन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी पुजिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सिर हिटका मूल मिर्जा जोत राखी दा तू जग मैं आया मान जाऊ पया प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखी सोग दुख ना भया पे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जा पे आन हत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभाव मिलया करण कारण जोगो ए श्री राम मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया जनार तेरा रचन रचया सुवर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानक श्री प्रवान हुआ जन सतगुर स्यों जित लाया हे नेत्रो मेरे हर तो मैं जो तरी हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो कोई नदरी हर निहाल आया यही विश संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी पुजा जा वेख हर एक है हर बिना वरना कोई कहे नानक नेत्रांद से सतगुर मिले आए बदरा टोई ए सरवणो मेरे हो साचा सुनदियां नो पठाए साचा सुनदियां नो पठाए श्री लाई सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी साचा लख बड़ाणी दा कीगत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो
ਭਦਰ ਸਾਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੋ ਬਿਠਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾਂ ਰੱਖੇ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾ ਵਜਾ ਪੌਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੋਦ ਰਖਾਇਆ।

तिथि को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिथि को तीन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहे गुरु जी सतनाम।

सिद्ध होती मेरा सतगुरा शब्द तुम हर जन हो अपे हम रुलते थे कोई बात न पूछता।

नानक गुरु न चितनी मन प्रेस के छुटा दिल पुआर जा सुंदा अंदर खेत के छा अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फली है अपने बकड़े पीता न वे सुआ कोड़िया पीने।

होमे ए आजाद है होमे कर्म कुमाहे होमे ए ही वंदना फिर फिर जोनी पाहे हमें जिथो उपजे कित संज में ए जाए हमें एहो हुक्म है पया कृत्य राय हम है दीर्घ रोग है दारू भी सुमा है कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमा है नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जा कोड़ी से आया उन्हीं मंदिर पहन रखे हो कर तो कृत कर्म तुम्हारे उन्हीं

मन रहे गुरबिन ज्ञान ना हो पौड़ी पड़िया हो मैं पुरहेगा ताओ में साधन माइए।

सलमाला सिल्क लाटं तो धोती बस्त पाटं जे जान परमं करमं सबो कर्मं कहो ना।

हे सभु जो भला फैला नाए मनी पथ उपजे सहलाई सच सूत दरगह अंदर पाए तगन तुप सूत तगना इंद्री तगन नारी फल के तुप पवे नित दाड़े तगना पैरी तगना यति तगना जेवा तगना यति वे तगाया पेवते।

चौके ऊपर किसे न जान। बेच चौका कढ़ी कार उपरे बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए आने साडा पिटे ठन पिटे फिर करे मन झूठे चली परेन कौ नानक सच तिहाई है सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित।

आप पानी देता है, आप आया चेतना हो आप पाप पवित्र हो पापी जो कलकटे आ चुका पैया चेत।

अने ओए करक सुनावे हर नाम की तो लगे गुरु सिख मन मिठा हर दरगाह गुरु सिख बनाई है दिल मेरा सतगुर सुधा जन राम को वर वर होया हर हर मन उठा।

तेरा मर्तबा। रंग परंग अनेक रजावन करतबा, जिया अंदर जियो तू सत जान ला, सत तेरा बस तेरा कर भला, तेरा घर आनंद

मलमल तो हुआ पाव मलोवा मलमल तो हुआ। एह मन तैकू देसा एह मन तैकू देसा हमीता हाँ तेरी शरणाई आया। देखो शरण विच आना सरेंडर करना समर्पित होना। गुरु नूं कोई भुख नहीं हैगी कोई गुरु साडियां जायदादां दी रजिस्ट्री नहीं कराउंदे। इह तां होमे दा त्याग है इह तां पकड़ दा त्याग है। सुन मीता हाँ तेरी शरणाई आया। हे सतगुरु मित्र मैं तेरी शरण विच आया। भाई की चाहुंदा है की मंगदा है तू दस मेरे कोलों। बस इत्थे असीं ध्यान रखना असीं मंगदे हां तियां पुत्र असीं मंगदे हां कारोबार असीं मंगदे हां दुनियावी रुतबे। पर गुरु पातशाह कहिंदे नहीं भाई गुरु कोलों मंगण वाली चीज तां इह है प्रभ मिलो देहो उपदेसा प्रभ मिलो देह उपदेसा प्रभ मिलो। हुण इत्थे ऊड़े नूं औंकड़ है यह फर्स्ट पर्सन है पर असीं आम तौर ते मैं देखिया कि मिलो प्रभ मिलो नहीं प्रभ मिलो मैं परमेश्वर नूं मिला मैनू एहो जिहा उपदेश देना करो मैनू एहो जिहा मार्गदर्शन करो मैनू एहो जी मत दिओ जिस करके मैं परमेश्वर नूं मिल जावां। क्योंकि मनुख जन्म दा उदेश रोज असीं पढ़ते हैं पई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कदे कदे संत तेजा सिंह जी महाराज मौज विच आके जदों समझाउंदे बड़ा सौखा जाओ उन्हां दा ढंग तरीका बड़ा ही सौखा। वो कहिंदे भाई सिमरन क्यों जरूरी है परमेश्वर नूं याद करना क्यों जरूरी है। कहिंदे जे तुसीं स्लेट दे उत्ते स्लेटी दे नाल सिफर दे निशान पाओ एक दो तीन चार पांच सत जिन्हें मर्जी पा लो किसे पढ़े या अनपढ़े नूं पुछो ये की लिखिया वो की कहेगा सिफरे हन। पर जे उन्हां सिफरियां दे खब्बे पासे एका ला दिओ फिर हर सिफरे की कीमत दस गुणा हो जाएगी। बस इसलिए सिमरन रूपी एका लाना बहुत जरूरी है। भावें तुसी संसार दे कितने काम कर लो कितने वड्डे बन जाओ रोज तुसी जपजी साहब च पढ़ते हो जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोय। पाठ तुहानू आउंदा है पर जदों तुसी उसनू समझ के पढ़ो फिर गुरु का आशा समझ आ जाए। लोग वड्डी उम्र का माण करते हैं पर पातशाह कहिंदे जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। जे किसी की चार युग उम्र हो जाए नहीं नहीं चार युग नहीं होर दसूनी दस गुणा हो जाए दस नालों नूं मल्टीप्लाई करो चाली युग हो जाए। नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोई चंगा ना और खाए के जस कीरत जग ले ये तिस नजर न आवई ता वात न पुछे के। फिर वो बंदा है कि जिहड़ा एडी वड्डी उम्र वाला इनी शोभा वाला इनी कीर्ति वाला जिदे नाल सारी दुनिया उठ के तुर पवे वो है कि पातशाह ने कीटा अंदर कीट वो कीड़िया विच कीड़ा है कर दोषी दोष तले परमेश्वर का सिमरन ना करन दा दोष उन्हूं लाया जाएगा उन्हूं दोषी ठहराया जाएगा। तो गल की साडे जीवन का मकसद का यह है पर गुरु अर्जुन देव पातशाह साडे कलयुगी जीवन बड़ा सरल ते सौखा जिहा मार्ग दसते ने भाई गुरु कोलों आके होर चीजा मंगण की बजाए यह अरदास करो हे सत।

रहा एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दे दिखाई सुन मीता धूरी को बल जाई ए मन तेरा भाई रहाओ पाम मलोवा मल मल धोवा ए मन तै कू देसा सुन मीता हाँ तेरी शरणाई आया शरण विच आया प्रभ मिलो दे हो उपदेसा मैं वाहगुरु नूं मिलना मेरा जन्म सफल हो जाए मेरा संसार विच आना सफल सकारत हो जाए मैनू उपदेश देना जे ते सचमुच तुसी ते मैं सारे गुरु की शरण विच इस भावना नाल आए हाँ लो फिर गुरु जी उपदेश करन लगे हुण सुन ध्यान नाल सुने एक मन की अवस्था बनानी पैंदी है ये मन की अवस्था बनाने वास्ते गुरु जी ने सानू पूरने पा के दस दिते हैं कि इस तरीके नाल गुरु के चरणों में बेनती करो आखो हे सतगुरु पाम मलोवा मल मल धोवा पाम मलोवा मल मल धोवा ए मन

मन चोया मन चोया माया बिस्मार मन चोया माया बिस्मार इस ग्रह में कोई जागत रहे इस ग्रह में एक घर की गल की थी इस ग्रह में कोई जागत रहे कोई जागता होया नजर आंदा भाई ना महाराज जागता कोई नहीं सारे सौंदे ते जे साडिया अखां संसार नु तक तक के नहीं अजे तक थकिया जे कन निंदा सुन सुन के अजे तक नहीं थके जे रसना साडी जुबान स्वाद खा खा के अजे तक नहीं रजी ता गरीब

जिन्हू पढ़िया ओही अखां विच, जिन्हू सुनिया ओही अखां विच, जिहदी आराधना कीती ओही कन्नां विच, जिसकी आराधना कीती ओही विचारां विच मन विच, जिहदी आराधना कीती ओही सुपने दे विच, अख खोली ते जागृत रूप दे विच वी ओही नजर आया।